अद्वितीय अलौकिक सनातन शक्ति भगवान श्री कृष्ण की आराध्या श्री राधा रानी ले ब्रजभूमि में पदार्पण करी धरणीलाई पावन तुल्याएको दिन श्री राधाष्टमी पावन पर्व को सबैमा मंगलमय शुभकामना।

खड्का, विष्णु शर्मा, सुरवीर पण्डित, सुनिता मालाकार थापा, अम्बिका प्रधान पन्त, गोपाल प्रसाद गेवाली, कुञ्जना घिमिरे, विमला केसी, भूपेन्द्र पराजुली र प्रदीप राज पाण्डे। रेकर्डिस्ट तथा ध्वनि सम्मिश्रण श्री राम राय माझी। निर्देशन जितेन्द्र महत अभिलाषी। संयोजन मदन दास।

दितोचन की कपला संघ प्रदेश संघ संदेश सुंग सबसे सोखा तेजन सोखपाती व नासो के लेरमी नासो को रिक्ञानी चिंगवा तुग्रांग के छिकाउ के एमबी तंदोगला गोतोफ कूटनीतिक सोखपाती संघ चाठी मृतुचेन चिंग गोतोफियन विक्रम लोगी तुंग दिंचु थोनंगी असोस लाकी गते सुमकी छिरमो गोमी सिंह जी डाक्टर रामवरण यादव के नया बानसो की चाठी मिलाखुंगे एमबी चाठी में खैफिल छुंगो घोषणा क्या नगोवियन दितुसेन की कवला सिंह जेनु रामचंद्र पौडेल की चाठी मृतुसेन की संघीय मांगसु की टिक यानी ती टिक नंगसिन यखबला सिदे सुंग्यो सुशासन तंग यर्गे की तंदोगला गोतुब्रे वाती वेरी लम्सु डोसी सुंगेन मुंदुन क्या नंगसुंग चाठीम की मेरे केरिक तंग रिक्सुंग नासोग्ला चिकोर क्यानी सुंग्यो क्याउ सुंगेन सिंह जेनु पौडेल की दुगै ने तंगला यम्बी मिमांग फर्की तमजी तंग ओसीला क्यों फोक्थो पुचिंग लाकाती वासी संग मिक्यो हिचे क्या नंगसुंग चाठी मृतुसेन नितोंग गेचुगे सुमकी कफला अरिंग प्रदेश दिनकर्की प्रदेश सोतिवा गोमी सिंह जिन विद्यादेवी फन्जारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले की चुख्याप केपी शर्मा ओली लोन्चोकी गोमी छोक्सो खिलराज रेग्मी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की ग्याजुनपा पुष्पकुमार दाल प्रचण्ड गोमी सिलोन डाक्टर बाबुराम भट्टराई की टस्तिल सुनाङवा तुग्रांग केनी अमेरिका की सुङकी छिसित लोन कांकी संग एमबी चिमो तोसेनकी कफला विज्ञप्ति चिख्याफेल की टस्तिल सुङवा आरिङ सैनिक मन सुडी खेला सिङजेनो रामचन्द्र पौडेलकी छोक्सुला चाठिम थुसेनकी कपला कोडिक्याउ हेन्जोमला एमबी मक्मी सशस्त्र मक्मी बल तेजेन एमबी कुर्सुङ मक्मीकी मार्च पास तेजेन ब्यान छेतेने दितुसेन चिन्गुवा चाठिम थुसेन तेजेन ग्यालुङ मूल समारोह छोक्पी कोडिक्याउ हेन्जोमला सिङजेन सोनबा रामसाई प्रसाद यादव सिलोन बालेन्द्र शाह टिम्पोन छेन्पो डाक्टर मनोज कुमार शर्मा प्रतिनिधि सभाकी छोक्सो डोल प्रसाद अर्याल राष्ट्रिय सभाकी छोक्चो नारायण प्रसाद दाहाल सुङक्योप छोक्पा सुमकर्की चोतिवा एमबी सुङकी थोरिम कुछप्तिवा तङ कुटनीतिक नियोगकी कुछप्तिवा छोक्सो क्या नगभिएन सिलोन बालेन्द्र साकी चाठिमकी नङला गोतोफ छिक्तङ सिक्याउ तमयतिवा घिकला सुङकी ख्यालेन गोतोफ सुङग्वा चाठिम तुसेनकी कबला संविधान दिवस मूल समारोह छोपी कोटी ख्याउ हेन्जोमला सुङलप नगिन सिलोन साकी सय टिवी ठिउ ठक्की ठिउ चाठिम सुङकी लाका ख्यानी लम्सो जफ सुङसुङ सिलोन साकी चाठिम नङला सुजुतिवा चोरङ ल्यामो वसिनाङ तिला थोकु लखपतिवा चेङ्गे मेसिङ तङ ठिमकी शिला मेसिङ खाङ फ्यान मथो सुङगिन ग्या खबला पोलोकपतङ लाका मेलकपाती वा मार्चिङ क्याङनी वतोपतापकी तिला पिनी मिथा सप लकपाती वा मङ रम्बो वतोपतङ मङबो वतो सुङ्गिन ग्यालखपकी यर्गेकी तोन्दोकला सुङकी चकपो क्यान लाका कितोप सुङसुङ तुग्रङके ने लारिमला सुङदप नगिन सिलोन साकी तन्दा सुङकी चकपो लकपोकी लाकाती वा मेता जोइ डिजिटल सुशासन की लाकी छर्सी नङसिन जोदाती वेजको सुवाला खाक्सेन पोची सुशासन तुसो नङसिन डिजिटल तेमा थाक्छोत कितोप ख्यालेन क्या नङसुङ तुग्रांग के सिलोन साकी रसवाकी फोटेको सिचाङबुला वाउ सतकी बङ्गी क्योन फोको कालेकी तुसोला रङजुङ काले टडिक तेजेन सुङक्योपकी लाकाला रोक्रामा क्याउ टोङरा ग्याखप चम्बलिङ चिछोक तेजेन छोक पातिवा गेर्की सखुलो सुङकी लचित पातिवा तङ यम्बुतङ चुगेला गोतोप एम्बी मिमाङ तेरेला थुचुचे सुनाङ सुङ सिलोन साकी एम्बी छप्सित नेताङकी टडिक गिरुवा तोगोप्ला तङ सुशासन कि सुवा जङ्ने मोको कि रिम्बला फ्रक गलोफ सैतिवा तेजेन जेन्जिङको किरिमला नासगोलो चेन्जी सैतिओला कुदुत सुनाङ सुङ दिपला रङ भोटेको सिचाङ बोला सोनी रक गलो रङ योल्थाङ छिग्योकी मितिओला कुदुत सुनाङगिन खोङतिवी खाङबे मिला सेम्सु श्री क्योनफोको मितिवी छोतेन नेताङ टिम्बो ल्यामो डोसिसिने मन्दन सुनाङ सुङ रसवाकी फोटेको सिला वाउ सतकी जोसालिन्सी त्रिशुली छुलोक आयोजना तेमा तोर पृथ्वी नङला मेरा चुचुकी फुङबु न्यौ स्याङ्वा छुलोक आयोजना कि कुछप्तिवा तङ सुङक्योप छोकपी चिकडिला तोर पृथ्वीवा छोलोप निम्बला हरिङ आयोजना कि अडिट सुमो टनेल कि जाली नङला सोर्नि गोतो फुङबु चेङा फिला थेन्दोप एम्बी मक्मी सेतोपिएन सोतकला सोर्नि तोरो पृथ्वीवा छोलोप लागा तन्दा हुर्थक क्याने कि गोतो स्याङ्वा भोटेको सिला वाउ सोतकला सोनी क्योन फुकु पपा हामा मेतो पेजी लोपसुङ ठोतेन तेजेन साफ समिटरिके तन्दोग्ला एमटीआई फाउन्डेसन कि टेङ्गा करोट गपचुङ्गा तिनतङ्ग बोम ग्याचुग्याङ्गा तेरो कल्क्वा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद कि टुङ्गेक छोकमी दुर्गा प्रसाद चालिसेतङ एमटीआई फाउन्डेसन कि छोकचो शेष घले कि ल्यारिमेची कोरी क्याने रोक्रमा कितोप कोर्के चिक डेलेकी गेला छाकिएक ख्या नगभिएन
सुङकी गाउखपचुक सुमला यम्बी सुङछापकी कोचा खेतोप तन्दगला मिङ सिफारिस क्याउसियन ग्वा लोन्छ्यानकी सिंहदरबारला देउ छोकदोकी क्याकर ज्ञानक अमेरिका तङ यम्बा गाउखपला यम्बी सुङछाप कोचा कि तन्दगला मिन ताङगुप थाक्छोत क्याउ सुङकी सुङसेपा तेजिन्न लोपजुङ चेर्मो लोन्पो सस्मित पोखरेलकी ख्यान्थोप नाङसुङ लोन्पो पोखरेलकी सेतोप नाङसिन सुङकी डाक्टर निश्चल नाथ पाण्डेला क्याकर डाक्टर कल्याणरा शर्माला ज्ञानक चिरञ्जङ थापाला अमेरिका तेजेन गौरव शमशेर जबराला बेलायतकी सुङछापकी कोसाला कोच्या केतोब्ला मिङ सिफारिस क्याउन तुगराङ केने सुङकी सरु जोशीला जर्मनी सुरेश कुमार कर्णला इसरायल प्राप्ति शेरजनला स्पेन जिज्ञान कुमार थापाला जापान डाक्टर पथमासे राणाला ओमान चुरामणि खरेला मलेसिया प्राध्यापक डाक्टर संगम श्रेष्ठला कोरिया डाक्टर मञ्चला झाला श्रीलंका तेजेन्द्र गिरीबहादुर सुनाला साउदी अरेबियाकी सुङछापकी कोसाला कोच्याक केतोप तन्दगला मिङ सिफारिस क्याउन लोनचोक तेमा सिफारिस क्याउ मिङ तिवा संसदीय सुनवाई सोकपा तेमा थाकचोत सुङसीमा सुङछापकी कोसाला कोच्याक केतोप ठिमकी टरी कोतोप सेन्क्वा तुगनाङ केने लोनचोक छोकदुकी नेपाल विद्युत प्राधिकरणकी तोङबा वतोप कार्यकारी निर्देशककी कोसाला काठमाडौँकी दीर्घायु कुमार श्रेष्ठला कोचा केतोपदाङ छाक्रोक टुङ्गी रुद्र सिंह तामाङला कोसा पर्णी टुङ्गीकी कोसाला परिवा केतोप थाक्छो त्याउ सुङसेपा पोखरेलकी ख्यान्तोक नगोभिएन नेपाली कंग्रेसकी थेङ च्याङी छोक्चेन नङ्गी वडा छोक्चेन नारिङने जुन कोचुन क्वा सोखी उले वदेम छोक्पी आरिङतङ सला सान्दे सुनगी वडा छोक्चेन कितोपलाकी थो ख्याफेल ख्याती आरिङने जुन औपचारिक शिला वडा छोक्चेन कोचोएन गलुफुसलाकी गते तिङ शोक शेख सोखी छोक्मी कोसला गोतोप छोक्मी तिवा तेरिकी कंग्रेस वडाकी छोक्चेनला छोक्सु कि थोफु कंग्रेसकी वदेम छोक्पी ग्याजेनपा प्रेमबहादुर खटकाकी ख्यान्तोप नाङसङ्ग सिलोनकी ठोतोनपो चौकी मिङतङ कोसाकी मिङखाङ तेप्चे थोनी मितिवला ठगी कितोप मेरा चिकतङ ङपचुङा ठुक्ला चिम्बो सेन्क्वा लाका कितोप तन्दगला इसरायल तुङ्गी सि चिलो नितोङ निसो जिल्ला लौ परिस्यातेमा माथु मितिविलाने टेङ्गा करोड ङपचो ठगी क्याउ क्युन्ला रामेसापकी फरत चौला गाईतङ दोलाखाकी बालिका शिव कोटिला कोर्सुङ मखमी चिम्बो येन रेडियो नेपालने सेरुवे सङ्गेर डोप्सुङ थुचुसे.